0: कितना है?
1: अरे हम लोग आने माँ
0: 10 बजे कच्चा
2: ए समय को साथ माँ जितू सुनचा दी पसल
3: भूसाल पेट्रोल पंप संगे चोड़िए को डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तरफ जाने बाटो माँ कुना को साइड माँ
2: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गर गहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

0: सुनस नीमा तीन बजे
1: ए समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: रेडियो आदि खोला एक सौ पांच थोप्लो चार
3: रेडियो आदि खोला एक सौ पांच थोप्लो चार।

0: नानी को तो मरीस गुआ सुन के हो आसको तो मेरे विचार ही मिलेन तो अर्क पार्टी को मर्क पार्टी को कसरी समझ भैं तेल हमें भोटाइदिन्न मैं तो मेरे पार्टी के मानेसा छोरी बिहे कर आज बड़ाई कार्यक्रम राखे
1: ए ठीक है।

एस आदि खबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार सेंजा

0: सुमित ना, आइए हम लोग आने में 8 बजे के छा
1: ए समय को साथ मा जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो मा कुना को साइड मा
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री गर्ने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है।